0: हरगिज झुकेगा नहीं सना।
1: रॉकस्टार डीएसपी लाइव बाटा बे एरिया एंटरटेनमेंट्स एंड रियल्टर नागराज अन्नैया इन एसोसिएशन विद एपेक्स कंसल्टिंग सर्विसेज प्रेजेंट रॉकस्टार देवी श्री प्रसाद लाइव इन कॉन्सर्ट June 26, 8 p.m. at San Jose Civic. Group discounts are now live. Get 15% off when you book 4 plus tickets in VVIP, VIP or Platinum categories. Get 10% off when you book 4 plus tickets in Gold. Get 10% off when you book 10 plus tickets in Silver or Bronze. For tickets, visit bata.org. Platinum sponsor, Senior Loan Officer Saujanya Anubotu. Gold sponsor, Amogham Indian Cuisine.